रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषा समाचार जो पेश पाखेना दिशा थौ नेपाल सम्बत चिन्सो पी खुद गुलाथो तृतीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्र परिषद ज्याको सरकारी सेवा दैगो वैदेशिक भ्रमण यात्रा व्यवस्थित व मितवे यागो धागुदो मिगजुगो प्रेस ब्रिफिङ प्रवक्ता हेमराज अर्याल प्रधानमन्त्री ज्याकुसँग फुक्क मन्त्रालय व उकिया कुए या सरकारी निकाय त पौछोया भ्रमण हुने निहने स्वीकृत कया जग हुने त उज व्याधिको ख भ्रमण हुना वगो न्यानो दुने उखे कालबिल यागो ज्ञान या त सक्लिया त इना बिमागो व्यवस्था नाप यागो वेक्ल कनादिल रौतहट बोलबम यात्रा नीति भारतीय झारखण्ड देवघर वोपी तीर्थयात्री दुगु बस चाकेलाना सोम सिगदो चाकेलाना गरुदा नगरपालिका या खुइद दुम नवल जयसवाल वेक या जहान वो चिदया शिवन मेहता सिगो भारतीय सञ्चार माध्यम धागु ख गरुदा पाखे पी न्याम तीर्थयात्री दुगु बस वो ट्रक ठक्कर नेटुङ्का ठो छाका जुगु ख नेपाली काङ्ग्रेस या नेता पिनसँग लोकतन्त्र सुदृढीकरण या नीति काङ्ग्रेस छप्प छदी जुइमा धैदिको दु काङ्ग्रेस या संस्थापन पक्ष मधुको पुचलम हिग ए यागु राष्ट्रिय तमुजे वेक पिनसँग देया त सङ्कटे व राष्ट्रिय चुनौती हाथे जुग्ने काङ्ग्रेस छप्प छदी जुइमा गुखे ब्याधिको ख पार्टीया पुलाम सभापति व पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लोकतन्त्र राष्ट्रियता व मेलमिलाप नीति बृहत्तर राष्ट्रिय समतीय नीति कुत यागु नेतना दिल ज्याजोसँग पूर्व महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत पूर्व सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय नेता रमेश लेखक पूर्व मन्त्री एनपी साउद पूर्व सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेत पिनसँग पार्टीया त पुलापी नेता व परिपक्व क्षमता अति मागु खे ब्यादिल थौ व कने थो काङ्ग्रेस या संस्थापन पक्ष मधुको पुचल बन्द सत्र न्याका चुङ्गुदो गृहमन्त्री सुदन गुरुङ कारागारे एन या त इलकत हिकेगु धैदिगुदो प्रतिनिधि सभा या कानुन या तथा मानव अधिकार समिति या मिग चुङ्गु मुज्या वेक्ल निर्दोष जेन्जी ल्यामते तत्वती माको खे ब्याधिको ख जेन्जी आन्दोलन या झोले मुद्दा तगुली मुद्दालित क्यात सरकार ज्या याना चुङ्गु वेक्ल कनादिल सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिली सेना दूरसञ्चार सेवा त तव्याके त कुत ज्या चुङ्गु थाइदिएको दु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण व नेपाल टेलिकम नाप जुगु सलस वेक्ल टेलिफोन व इन्टरनेट सेवा गुणस्तर मधुको खपिया वगुलु याक्न उकिया त जेङ्के त उज नाप ब्यादिल वेक्ल थुसी दूरसञ्चार लागा या युपा या द या रूप नाला कयागु ध्यादिसे प्याची नक्सा दुग्यङ्क ज्या जुगु खने दै कथ ज्या या त उज नाप ब्यादिल शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल सरकारी सूचना प्रवाह या त पाचे नक्सा व्यवस्थित यागु धैदिएको दु शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग तिथि सञ्चार माध्यममा सम्पादक बिना पखलना दिसे वेक्ल थते धैदिएको ख शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल सरकार या फुक्क ज्या या त लोकतान्त्रिक मु मान्यता कत न्याइगो भलसा ब्यादिल वेक्ल विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शी व निष्पक्ष कत यानागो ध्यादिसे विश्वविद्यालय त पारदर्शी नाप स्वायत्तता बित व शैक्षिक गुणस्तरीयता अपके त नेतना दिल दे या स्वास्थ्य प्रणाली या त व्यवस्थित जकमुखु मो दाम बालागु वास या त स्वास्थ्य बिमा नाप स्वात बुगुदु प्रधानमन्त्री व मन्त्र परिषद ज्याकिम हिग जुगु छगु सलस एसटी या त लिचो लाकेको कथा फिङ्केको प्रधानमन्त्री या स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवाल थते धैदिगु ख काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयु या उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर विवेक बराल नियुक्त ज्यादिको दु प्रधानमन्त्री व विश्वविद्यालय कुलपति बालेन्द्र शाह उपकुलपति छनौट तथा सिफारिस समिति या सिफारिसे वेक या त नियुक्त यानादिको ख सुदूरपश्चिम प्रदेश नुम मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट पद्यापा फयादिगुदु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा या
प्रदेशसभा संसदीय दल या नेता भट्ट नुम मुख्यमन्त्री नुयोग तजु आदिको ख वेक्लम हिगहे नेकपा एमाले या सोम मन्त्री वा छम राज्य मन्त्री देका सरकार तब्याका दिगुदो चक्रबहादुर मल्ल आर्थिक मामिला सन्तोष शर्मा थापा सामाजिक विकास दमन बहादुर भण्डारी भूमि व्यवस्था जानकी एयर बम आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री जुयादिगुदु सर्वोच्च अदालत जनआस्था साप्ताहिक या प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ या त सोमबार अदालतले उपस्थिति याके त प्रहरी या त आदेश बिगुदो न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल या छगु इजलासमा वेक या त अदालतले उपस्थिति याके त आदेश बियादिगु ख पत्रकार श्रेष्ठ या पाखे वेक या जान सरस्वती श्रेष्ठ विवा थुनामुक्त या त माग्याना बन्दी प्रतिसीकरण रिदारियानादिगु ख रिते चुहे आधार मधेक जोङ्गु धासे वेक या त थुनामुक्त या त माग यानादिगु ख बुधबार बहनी पत्रकार श्रेष्ठ या त जोङ्गु ख ए जिल्ला अदालत विवा वेक या त प्रहरी हिरासत ते त सुनु या अनुमति पुगुदु बागमती प्रदेश या मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिया भदौ एक गते प्रदेशसभा विश्वास मत क्यातिङगुदु सचिव छिगु दुज दुगु बागमती प्रदेशसभा खुम दुजल प्रदेशसभा चुनाव उम्मेदवार जुयादिगुली आ दुगु सचिव पेम प्रदेशसभा पाखे ने सोम दुज या समर्थन वेक या त मा वेक या त नेकपा एमाले पाखे बियातको समर्थन लित काठुङका वेक्ल भदुक एक गते हाक्न विश्वास मत काया दितेङ्गु ख राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नायक तपबहादुर मगर आयोग यागु सिफारिस कार्यान्वयन या अवस्था मोजुगु ख धैदिगुदु संघीय संसदीय संहिता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरकार समिति बैठकले नयाँगु चोले नायक मगर आयोग स्थापना कालिसे आतक यानागु सिफारिस मध्ये 52.60% कार्यान्वयन मजुगु ख थैदिगु ख मानव अधिकार वर्तमान अवस्था व आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धी जुगु सल ज्याजुले वेक्लम ख सिफारिस जुगु मध्ये 13.9% जग पूर्ण रूपे छेलबुला वोगु ख नेतना दिल कलाकार व संसारकर्मी स्वतन्त्र संसार महर्जन या वार्षिक पुण्यतिथि या झोले वेक या योगदान जीवनी व कला लागे दुगु योगदान या त लुमका श्रद्धाञ्जलि ज्याजो या आगुदो फ्रेज थ्री प्रकाशन या गोसाले जुगु थो ज्याजो किर्तिपुर सिनेप्लेक्से जुगु ख उगु ज्याजोले मधुम महर्जन या जीवन यात्रा कला व संचार लागे दुगु योगदान बारे विशेष सामग्री लिसे पौ प्रकाशन यागु ख उगु पौ या पितुपोज्या चलचित्र विकास बोर्ड नायो दिनेश डिसी किपु नगरपालिका मेयर कृष्णमान डङ्गोल इलो या प्रबन्ध निर्देशक नरेश बिर साक्य एल वडा 21 नायो रविन्द्र महर्जन व 16 नायो निर्मल रत्न साक्य अग्रज कला कमी पवन जोशी ओ पत्रकार विजय रत्न असबर पिन्से मङ्का कथ यानादिगु ख ज्याजोले किपु नगरपालिका मेयर कृष्णमान डङ्गोल यलो वडा 21 नाय रविन्द्र महर्जन पिन्स स्वर्गीय स्वतन्त्र संसार महर्जन या गुणानुस्मरण यानादिगु ख ज्याजोले वरिष्ठ सिने पत्रकार विजय रत्न असबरे यलो वडा 16 नाय निलमर रत्न साक्ये अग्रज रङ्ग कमी पवन जोशी पिन्स आफ्नो कला ह्यमी पिनिगु उपस्थिति दुगु ख ज्याजुले नेपाल चत्रका विकास बोर्ड नाय दिनेश दिसी स्वर्गीय स्वतन्त्र संसार मर्जन लिसे थगु स्वापु नाप व्यक्तित्व कला लागे दुगु योगदान बारे नुग ख न्यवादिल नाजाम म्युजिक भिडियो निर्देशक विश्वास ब्रजाचार्य निर्देशन निर्माण जुगु ए मेजु बोल या नेपाल भाषा म्युजिक भिडियो थौ शनिबार पिडिने तेङ्गुदु मेहालमे तेजवती जोशी व विजेन्द्र चौहाल या सदु थ्यागु थुगु मे सुरजवीर ब्रजाचार्य चुयादिगु ख जुगल डङ्गोल या लसे हनादिगु थुगु मे या सङ्गीत संयोजन नस्वयम ले चिनामी डङ्गोल हे यनादिगुदु नेपाल भाषा मङ्का खलया गोसाले नेपाल भाषा एकाडेमी चान्सलर मङ्का खलया संस्थापक व हामापुचा दुज नेवा नेहलवा साहित्यकार मल्लके सुन्दर चुयादिको ना जागु उपन्यास सेप्टेम्बर 11 यातका सल मुजा जितेङ्गुदु आइतबार निनेसिय स्वतत्या इले नेपाल भाषा मङ्का खलया ज्या कुई जुगु उगु सल मुजा सेप्टेम्बर
एघार उपन्यास यातकया प्राध्यापक डाक्टर राजनलाल श्रेष्ठ, उप प्राध्यापक रवि साकिय, विषयगु गोसादु, गुल्ला पर्वय लसता सेवा अभियान, स्वयम्भू चैत्य लागे कने सुचुपिचु ज्याजो याइगु जुगुदु, जापानी चुना चुना दिम सेवा अभियान खोजे सुनिल कुमार साक के थोइले नेपाली ओया चुना दिगुदो साक्य ब्यादिगु जानकारी कथा आइतबार सुथे स्वयम्भू भगवान पाउ मुना सुजपुज ज्याजो या तिङ्गु ख। गिटार बादने अन्तर्राष्ट्रिय नाचाम गाएको सङ्गीतकार अनिल साई या नुगु प्रस्तुति कथा हिमालयन फ्लेमिङको या साङ्गीतिक भिडियो पिहा ओगुदो उगे ज्याजुले गायक राजन श्रेष्ठ निसार दिशा नपो हालादीको नेपाल भाषा या जोमे याङ्गु स्वायन पित बुझ्या जुगुदु नाजाम मे हालामी सतीश मर्जन याको साङ्गीतिक साँझ सोलो कन्सर्ट वैगो भाद्र छ गते शनिबार किर्तिपुर सिनेप्लक्स जुइतेङ्गु जो सतीश या स सङ्गीत या ज ना ब्यातक उगु सोलो कन्सर्ट नेपाल कला संस्कृति उत्थान समाज या गोसाले जुइतेङ्गु ख। इन्डोनेसिया थौ सुते नेगु पुटिन हेगु म्याग्नेच्युड या त फुख्या बोगुदु फुख्या लिपा अधिकारी पिन्स सुनामी वैगु ख्याचो ब्युसे समुद्र लिक चोपिन त था हिले त उज बिगुदु अन न्यागोपुटी गुगु न्यागोपुटी खुगु व खुगुपुटी छगु म्याग्नेच्युड या सङ्गो लि फुख्या नापो बोगुदु फुकाले यागु क्षति वे लिहदनी थौ दे या हिमालय पहाडी लाग्या न न्याना मलोकुतुङ वया वा नाप चपु कुवा वैगु धागुदो तराई या मो थासे वा वैगु नाप धागुदो बागमती गण्डकी कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश या पहाडी लाग्या छग्नीको थासे आफ्नो वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागु ख। मिग सुइगुफुटी न्यागु डिग्री सेल्सियस या क्वाजु लुगो ख थौ फच्चम हो क्वाजो लुइ धागुदो सुथे न्याता इजुया नि नेगु मिनेटे लुगु सूर्य सनिलिया खुता इजुया पि नेगु मिनेटे बि नेपाल भाषी बुख कोचाला शुभ्या।

की खाद देवी योत्सोक्प वरांगी की लोटुक चुरेगा की उदयमाय खत्री नासा गलोफ जोंखी को सुंगमा पीला खुंग नुआकुर की चो एसपी विपिन रेग्मी की ख्यांथोक नांगसुंग तुग्रांग के ने दापक्यो ग्लाशो नुक्यो नुफोकु मेरासुम ग्यालस कारफुंडोला मेन्जुखी वतुप शेनक्वा छर्वी जोसालिन्सी ग्यालखपकी दासनासोकी लामना गल्नी वतो सेनक्वा कुर्सुङ मक्पी प्रधान ल्याखुङकी आरिङ टोप्लासकी शोतक टोपी थो ख्याफेलकी चोङखा नाछोकी लामला डिमडोल जिन्क्योङ खितुप्ला कले छुङ्गो सेनक्वा शोतक टोपी थोरिम कलेला खाक सेनपोची काभ्री फ्लान्चोक सिन्धुली थितु पिपी गेलामकी खुडकोट नेपाल थो कटुन्जे फेसी लाम घिमी ठेङमा गोमो छुजो ठुक्ने चुन्न टोपकी छुजो जिसेक फन्दा ख्यानी डिमडोल जिन्क्योङ खिमाच्यु कुर्सुङ मक्मी तिलामला डिमडुल तिवा टोपला छुजो जिने चुनु गमो छुजो ठुक्सेकी नाङला जिन्क्योङ कि थोपु सेनक्वा तुग्राङ केनी मकवानपुर कि कान्ति लोक फतलासँग छेर्वी जोसालिन्सी गमो छुजोङ ने चुनु टोपला छुजोङा सेक डिमडुल तिवा तिरी जिन्क्योङ खिमाची गोतोपिएन तुग्राङ केनी इलामथोङ खेर वडा आङ्गु रासुवालीला छेर्वी जोसालिन्सी लम्ला दक्चुर खिल्नी मेची गेलाम नागल ग्वासिसी सिन्धुपाल चोकी अरेनी गेलाम नङ्गी फोर्टीको सियुल छोक्पा वडाङ जी चार किलो लिपिङलासँग टोपी जोसालिन्सी लाम नागलोफताङ रसवाकी उत्तर गाई यो छोक्पा वडाङ खालचेलासङ लाम छेनी टिसुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी लाम नागलोफ कोर्सुङ बाग्मी सेतोभिन्न ग्यालखपकी ठोतेन प्रणालीला टटी कितुब्ला ग्याछा जब तेजिन जोलोमो जबकोला सिलोन तेजिन लोन्छन ल्याखुङला टोङ्गो छुङ्क्वा सिलोन बालेन्द्र साकी ठोतेन ठोतोनपो डाक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवालकी गोठिला देव छोक्तुला आदरभु ठोतेन सेवा तेजिन नजानासुकी मेन्जुचिक जब ख्यान लग्लेन कितुब्ला ख्याफेल क्याउ मानव उपचार प्रोटोकल एसटिपीला ठोतेन बिमातङ क्यान थिने फेन्सेनपो जब लग्लेन कितुबकोला टोङ्गो छुङ्गो भिएन टोङ्गु कि रिम्बला ठोतेन लोनखाङ नङ्गी क्युरेटिभ सेवा प्रभाव कि निर्देशक डाक्टर पनजङ राई माझीतङ पेडियाट्रिक न्युरोलोजी कार्डियोलोजी हेमोफिलिया ओरल हेल्थ एन्ड इएनटी तङ यम्बा सखोल चुर्गु कि ठोतेन मेनपा खपातिवा छोक्सु क्या नगोभिएन मेनपा ख्यापतिवी डाक्टर पि सखुला थोकी वा प्रोटोकल कि जोलोम्बोतङ कालेतिवी कोला ख्यान्तोक नङ्गिन ती कालेतिवा ग्यार्ग्या जब तन्दोग्ला टोङ्गो नङ्गो सेनक्वा जेन्जी मुकुलकी रिम्बला सहितकी खङ्बी मिलातङ क्योन फोकुतिवी तन्दोग्ला टेङ्गा बुम ङप्चु छावा तेरुप चरिक्यानक्वा सुङकी नोर्लोन खाङकी दाङ सौलियत पूर्ण खर्चाकी तन्दोग्ला ब्याज अनुदान कुर्की कार्यविधि नितुङ गेचुग्या सुम ख्याफेलकी जेन्जी मुकुलकी रिम्बला नास गलोप सहितिवी खाङबी मिलातङ जेन्जी मुकुलकी रिम्बला क्योन फोकु मितिउलासी टेङ्गा बुम ङप्चु सेकी छावा तेरुप थाक्छु त्याउन जेन्जी मुकुकी रिम्बला क्योन फोकु ग्यालखप नङ्लारङ लाकी कोकप छोलुब्ला तङ छोङ कितुप तन्दोग्लासी सुङकी छवातेरुप थाक्छो त्याउन सैतिवी खाङबी मिताङ क्यान क्योन फोकुतिवी तन्दोग्ला बिन्दुप छावा कृषि तेजिन पशुपन्ची छोङ घरेलु तेजिन जुक्टुन टिकपेला दलेन लक्ष्य कोर्की छोङ टोछम छोङ स्टार्टअप छोङ तेजिन यम्बी सुङकी तुछो तुछोला तेन्तेन क्याउ यम्बी लाकी छोङ जिन्क्योङ खितुप्ला डोसोङ तोङ्गो सेनक्वा बागमती प्रदेश सुङकी लोनखाङ थिसिमा प्रदेश ढुङ्गीकी लाकी सखुलकी ल्यागेन तेन्तेन क्यानक्वा दाङ प्रदेश लोनछ्यान छोकदुकी थिउ लोनखाङकी लुनु पोतुप्ला गतिवा तिरी डुपा माछुङ कि तन्दोक्ला प्रदेश टुङ्गीकी लागि सखुकी ल्यागेन तेन्तेन कितुप थाक्छो त्याउन प्रदेश सुङकी सुङसेपा तेजिन पजुर कोर्की छर्सी लोनपु प्रभात तामाङकी सेतोप नाङसिन आन्तरिक मामिला ठिम तेजिन सहकारी लोनखाङकी ल्यागेन महेश भट्टराईला नङ्गोभिएन तुग्राङ केनी जुक्टुन छोङडिल टो छम श्रम तेजिन डिम्दु लोनखाङ नङ्गी जुक्टुन तेजिन छोङडिल सखुल जीपलाल भुसाला श्रम तेजिन डिम्डुल सखुल अनिता निरौलाला रिक्सुङ तेजिन टो छम सखुकी ल्यागेन दिपेन्द्र सुवेदीला नङ्गोभिएन तुग्राङ केने ठोतेन तेजिन चिसो ग्यार्ग्या लोनखाङ नङ्गी चुन्दा तेजिन चेर्मो सखुकी ल्यागेन गीता कुमारी हुवा गाईलाई नाङ्गुवा सिसी ठोतेन सखुल डाक्टर सुमित्रा गौतमला तङ चिसोक सखुकी ल्यागेन खुबिराम अधिकारीला नाङ्गुवा तुग्राङ केने कृषि पशुपन्छी नाथुङ तेजिन खोरिक लोनखाङ नङ्गी नाथुङ तेजिन खोरिक सखुकी ल्यागेन डाक्टर केदार फराल्ला कृषि तेजिन पशुपन्छी सखुकी ल्यागेन सुधीर श्रेष्ठला नङ्गोप सेनक्वा डाक्टरपुला नङ्गोप ल्यागेन दिवा लोनखाङ नङ्गी सङ्गठन तेजिन व्यवस्थापन सर्वेक्षणकी लाका डुपा माछुङ सेक लक्लेन कितुप सुङसेप तामाङकी ख्यान्तोक

तिनी मिपुइबा बस दुर्घटनातामा मेन्दोङी मि शिवमला बिसाम मेन्दोसोम घाइते थापा मला घाइते थापा मेन्दोसोमला याम्बुरी मान्ला पनि मला नुवाकोटला दुप्चेश्वर महादेव जालबारी निभा मिक्रेब बस शिवपुरी गाउँपालिका निश्री मुभा थाना भन्स्याङरी दुर्घटनातामा काभ्रेजोङ भनेपा नगरपालिका भ्रेला नाचुइसे ब्लिदिङला कृष्णमाया प्रजापति डङ्गोलथेन रामेछाप जोङला खाडादेवी गाउँपालिका निला डुचुइसे घाँदिङला उदयमाया खत्री शिवमला विषय प्रहरी से पाङबा हिन्ना बस दुर्घटना तबला पाइयान्नुन उद्धारलाबारी घटना तबघारी दोबा जोङ प्रहरी गेदेम नुवाकोटला प्रहरी उपरीक्षक विपिन रेग्मीला अनुसार घाइतेदा उद्धारला सिम्मानलाबारी याम्बुरी पुइबला पाइयान्नुन मेन्दुङी मि शिवमुबा विषय सुङ्गमुला ग्रेन नाम ताइबली चखबा भालथेन दुई से युल्ला लामान घ्लारी मुबा सडक ग्याम गदेन ढोङना लाबा बोला प्रहरी गेदिम से तिनी सियो दोनामा भालथेन दुई से ढोङना लाबा सडक ग्यामना विवरण सार्वजनिक लाबान युल्ला लामान झोङरी मुबा सडक ग्याम रि दान्देनुन सवारी साधन सिंहमारी खामसिटी बारे विषय पाङबा मोला काभ्रे पलाञ्चोक थेन सिन्धुली थुइबा बिपी राजमार्ग ल खुर्कोट नेपाल थोक कटुन्जी बेसी सडक ग्याम रि तापरी खाम्बा जोखिम न च्यासी यासेला ढुङ्गामा हेन्से सियोला ब्लिङ ग्याम दोनादा बेनन खाल्ला सवारी साधन गदे सिंहमारी आपिन्न काबमला चुरानुनासी मकवानपुरलाई कान्ति लोकपत्री डुन यासेला गाङ्गामा हिँड्छे सियोला गाङ्गामा दोना सवारी साधन सिंहमारी आपिन्न काबमला इलाम नगरपालिकाको राजदुवाली बिबग्लारी लामान हिलो तापासै मेची राजमार्ग त नुङ्नेला बमला सिन्धुपाल्चोकला अरणीको राजमार्गला भोटेकोसी गाउँपालिका ब्ली चार किलो लिपिङनी मुबा सडक ग्याम्री ढोइ खापासै थिए ग्याम्री नुन सवारी साधन सिंहमारी आपिन्न काबमला ओर्से रसुवाजुङला उत्तर गया गाउँपालिका घाँ खाल्टे बिबग्लारी सडक ग्याम दा भालसे ब्योङ नला बसे त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी कच्ची सडक ग्याम नोङमा मुला बेसी प्रहरी से पाङबा मुला सरकारसे जिएनजी आन्दोलनला सही दिन्थेमे थेन घाइतेदा तिलै छुङ गे थेन गेलाबारी खामगा विषय लाख गाँचुई दोना सहुलियत छेपिनबारी ठिम्सो बोला नर्बन खाङसे तिलमा सहुलियत छेपिनबारी ब्याज अनुदान सम्बन्धीला निच संशोधन गेविधि 2083 जारी लासे चुराङमा ठिम्सो हिन्ना नर गेविधि थेन वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076ला दफा ढुचुइसे घाला उपदफा ब्लिसे पिनमा याङताम द प्रयोग लासे ब्लोनखाङसे गेविधि संशोधनला बहिना विषय पाङबा मुला संशोधनला बा गेविधि रि जेन्जी आन्दोलनला सहित दिम्थेमे थेन घाइते गदेदा बेसी स्वरोजगार उद्यम कर्जा अर्थात् छे पिनमा थिम बाबहिना चु छे जेन्जी आन्दोलनलाई सहित दिन्थेमे अथवा घाइते से लाख गाँचुई दोना टाङ्गा किनबारी खाम्चेला तापा मुला गेविधि अनुसार जेन्जी आन्दोलनलाई सहित दिन्थेमे अथवा घाइते तापा नेपाल सरकार अथवा युल्ला ठिम अनुसार तोकलाबा निकाय से प्रमाणित लातो सेला तापा मुला जेन्जी आन्दोलनलाई सहित दिन्थेमे विवा आन्दोलन रे घाइते सहित धोबा मिला रेम्बा मृङ कोला जामे आपा अथवा आमाता धोबा स्पष्ट ब्रिप मला सहित दिम्थेमे थेन घाइतेदा सानाम थेन पशुपन्छी छोङ दिम्रिन सोबारी खाम्बा जाजा जाजा उद्योग सेवा पिनमारी खाम्बा छोङ सूचना प्रविधि आधारित छोङ पर्यटन छोङ उत्पादन लबारी खाम्बा उद्योग स्टार्टअप उद्यम थिएन नेपाल सरकार चाहिँ दुई दुई तोक लाबा स्यान उत्पादन लबा थिएन पिनमा गे सहुलियत छे पिन्छेल मला विषय पाङबा मला ऊर्जा किनोर थिएन सिन्चाइ ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठ से युल्डी खापा पोदा खेन्सी ब्योन गदे गाछ वाङबारी खाम्दोला विशेष संक्षेप मला महर्षि कलेज सामा खुसी रेती निसेङबा अभिमुखीकरण थिएन रिमठिम हुनमा गेखोरी लेमथान्सुबान ब्लोन श्रेष्ठ से ब्लोन ब्योन गदे से बाङ्ला बहिन्ना विषम ज्याबा ह्युल छोबारी खाम्सेर मला विषय सुङ्क्षु बहिन्ना सूचना प्रविधि ग्याम मोक्युल्दा गोर्गिग्लोन दिम्सोबारी खाम्से जिम्मा से सूचना प्रविधिला लामा बिमा लामा प्रयोग लासी ज्याबा ह्युल छोबा गेदा योगदान पिन मारिनुन ब्लोन श्रेष्ठ से मोइजन लासु बमला युल्ला लुइथिम द व्यवस्थित गुणस्तरीय थेन सजिलोसन पिनमारी थेन किनमारी खाम्बा सुबारी काइब्लोन थेन ब्लोन सिङजाङला गेदिम्री काठुइती बमला काइब्लोन बालेन्द्र साहला लुई सल्लाहकार डाक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवाल लचोहबाङरी टिबची साङसे आधारभूत लुई सेवा थेन लोलो लोलो ह्यामला मान्लाबारी खाम्बा प्रोटोकल एसटिपी द स्वास्थ्य बिमा थेन थुइसे प्रभावकारी रूपले लागु लाबा ताम्रे काठुइला बहिन्ना चिसाङरी लुई थेन चाबासे स्वच्छता ब्लोनखाङला क्युरिटिभ सेवा प्रभागलाई निर्देशक डाक्टर पवनजङ रायमाझीला छ्याम्री पेडियाट्रिक न्युरोलोजी कार्डियोलोजी हेमिफिया फेलिया ओरल हेल्थ इएनटी राङबा गोर्चिसे भ्रे थुम्ला विशेषज्ञ डाक्टर कादेसे बोकिन बमोबा विशेषज्ञ डाक्टर कादेसे राङराङला थुम्री प्रयोग लाबन खापा प्रोटोकल सजिलो थिएन चुनौती गोर्गिनुन मोबा ताम्ला जानकारी पिनबान दान्देला ठिम्दा ज्याबसोबारी सुझाव

रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। मिथिलाञ्चलमे आइसँ झुलनोत्सव झूला पर्व शुरू भेल अछि। साउनमे शुक्ल पक्ष तृतीया तिथिसँ शुरू भऽ झुलनोत्सव पूर्णिमा तिथि धरि जारी रहैत अछि। झुलनोत्सवमे मठ मन्दिरमे सिंहासन निर्माणके सजाओल गेल गद्दी पर राम सीता सहित देवी देवताक मूर्ति राखि झुलेबाक परम्परा रहि आयल अछि। मिथिलाक सांस्कृतिक पर्वक रूपमे चिन्हल जायवला झुलनोत्सवक शुरुआत संत परम्पराक प्रारम्भसँ भेल पौराणिक मान्यता रहल जानकी मन्दिरमे रहल छोटे महंत राम रोशन दास वैष्णव बतौलनि। संतसब खुला चौर आ गाछक छाहरिमे बैसिकए झोरामे आनल शालिग्रामके आसनमे राखि झुलाओल जनविश्वासक आधार पर मिथिलामे एखनो धरि झूला उत्सवके बहुत महत्वक संग देखल गेल ओ कहलनि। मिथिलाक प्रत्येक मठ मन्दिरमे झुलनोत्सव मनेबाक कयल गेल बावजूदो जनकपुर धामक मठ मन्दिर आकर्षणक केन्द्रके रूपमे मानल जाइत अछि। झुलनोत्सवमे विशेष कऽ भगवान सीताराम आ राधा कृष्णके आइ साँझसँ झूलामे झुलेबाक चलन रहैत आयल जानकी मन्दिरक छोटे महंत दास बतौलनि। जानकी मन्दिर सहित विभिन्न देवी देवताक प्रतिमा रहल प्रत्येक मठ मन्दिरमे विशेष तरहक सिंहासन निर्माण कऽ सजाओल गेल गद्दी पर देवी देवताक प्रतिमा राखि झुलेबाक चलन परापूर्व कालसँ रहि आयल अछि। मिथिलाञ्चल क्षेत्रमे नवविवाहिता मिथिलानी लोकनि आइ मधुश्रावणी पर्व सम्पन्न कयलनि अछि। मिथिलाञ्चलमे मौना पञ्चमी कहल जायवला साउन मास कृष्ण पक्ष पञ्चमी तिथिक दिन मिथिलानी लोकनि ई पर्व शुरू कयल आइ तेरहम दिन समापन भेल अछि। साउन मास कृष्ण पक्षक पञ्चमी दिनसँ शुरू कए तृतीया तिथि दिन समापन करबाक मैथिल चलन रहल अछि। पति पत्नी बीच प्रगाढ़ प्रेम संबंधक कामनाक संग नवविवाहिता मिथिलानी लोकनि ई पर्व विवाहक भेल वर्षमे मनाओल करैत छथि। श्रीमान द्वारा पठाओल गेल सामग्रीसँ मिथिलानी लोकनि अपना नैहरमे खाद्य सामग्री नया वस्त्र परिधान आभूषण लऽ पूजा पाठ कयल करैत छथि आ फुल्लोरी सेहो कयल करैत छथि। मिथिलाञ्चलमे नवविवाहिता ई वधू लोकनि 12 दिन धरि नवव्रती सब व्रत उपवासके ठेहुनमे टेमी दगबाक चलन रहल आ एहिमे मिथिलाक ब्राह्मणके देव सुनार जातिक महिला लोकनि मात्र मनाओल करैत छलथि, मुदा आब विभिन्न जातिमे ई भाषा संस्कृति परम्पराक चलन बढ़ल गेल देखल गेल अछि। अर्थमन्त्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले प्रवासमे रहल नेपालीके नेपालमे निश्चित भक लगानी करबाक लेल आह्वान कयलनि अछि। चीनक ग्वांगझाउ शहरमे आइसँ शुरू भेल गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA के 11 एशिया पैसिफिक सम्मेलनके वीडियो सन्देश मार्फत नेपालमे लगानीक वातावरण बनैत जा रहल निश्चिन्त भक मन्त्री वागले नेपालक पर्यटन सूचना प्रविधि आ ऊर्जा क्षेत्रमे लगानी करबाक लेल अनुरोध कयलनि अछि। सरकार लगानीक माहौल बना रहल अछि, देशमे रोजगारीक वातावरण सृजना करबाक वातावरण भऽ रहल ओ बतौलनि। AI आ सूचना प्रविधि क्षेत्रमे काज करबाक लेल प्रोत्साहन करबा सन नीतिगत रणनीति सब कार्यान्वयन भऽ रहल अछि। पर्यटन सूचना प्रविधि क्षेत्रमे हरित ऊर्जा उच्च मूल्य युक्त कृषिमे आ आयात प्रतिस्थापन होबयवला क्षेत्रमे लगानी करबाक लेल ओ आग्रह कयलनि। सरकार नतीजा देखबा सन तीव्र गतिमे काज कऽ रहल बजेटसँ 27 नया कानून आनिकए लगानी मैत्री वातावरण बनाबाक लेल सरकार काज कऽ रहल ओ उल्लेख कयलनि। अर्थमन्त्री वागले सम्मानजनक रोजगारी सृजना करबाक लेल सरकार विशेष ध्यान देल आ सरकारक आमदनी बढ़ेबाक लेल कर प्रणालीमे सुधार कयल, बजेट मार्फत आर्थिक राजकाजक जहाज मोड़ल आ पहिल बेर सुधारक शुरुआत मात्र कयल ओ उल्लेख कयलनि। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा आइ नुआकोटक विभिन्न स्थान में रहल भूस्खलन आ ओकर कारण जोखिम में पड़ल बस्ती के अवलोकन कयलनि अछि। अवलोकन पश्चात भूस्खलन के कारण जोखिम में पड़ल बस्तीक तत्काल आवश्यक संरक्षण एवं स्थानांतरण, अवरुद्ध बनल सड़क, पेयजल, विद्युत सेवा संचालन हेबाक लेल प्रबंध मिलेबाक हेतु माथदक निकाय के संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा निर्देशन देलनि। ओ सूर्यगढ़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 1 स्थित सिमरांग भीर में गेल भूस्खलन आ एहिसँ जोखिम में पड़ल बस्ती के जानकारी लेलाक बाद वार्ड नंबर 2 स्थित फाटपुर पहरे थोक में गेल भूस्खलन सँ अवलोकन सहित एकर कारण जोखिम में पड़ल बस्ती, अवरुद्ध भेल सड़क, आवागमन, विद्युत सेवा, ढांचे
पेयजल योजनाक पाइपलाइनमे पहुँचल क्षतिके अवलोकन निरीक्षण कयलनि। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ऑनलाइन सँ बीमा में आबद्ध भ सकबाक प्रक्रिया शुरू कयलक अछि। बीमा कार्यक्रम में नया आबद्धता, बीमा लेख नवीकरण, सेवाग्राहीक व्यक्तिगत विवरण अद्यावधि करबाक, KYC अपडेट सहित सब काज ऑनलाइन मार्फत कयल जा सकैत अछि। बोर्डक प्रवक्ता डॉक्टर पवन कुमार साह शुक्र दिन सँ शुरू कयल सेवा मार्फत ऑनलाइन सँ सब विवरण आ सेवा प्राप्त कऽ सकबाक जानकारी देलनि। ओ कहलनि जे एहिके लेल ई सेवा खलती आ कनेक्ट IPS मार्फत भुगतानी कयल जा सकबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। एहि प्रणाली मार्फत व्यक्ति स्वयं तथा दर्ता सहयोगी सँ परिवार के डिजिटल माध्यम सँ स्वास्थ्य बीमा में आबद्ध तथा बीमा लेख नवीकरण कऽ सकैत अछि। एखन बीमा में 59,70,403 गोटे आबद्ध भेल प्रवक्ता साह जानकारी देलनि। हुनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अंतर्गत 5 गोटे परिवार धरिक लेल 3,500 के योगदानक आधार पर 1,00,000 धरिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराओल जाएत। थप प्रति सदस्य 700 सँ योगदान रकम थपित जेबाक आ प्रति सदस्य 20,000 बराबर के सेवा सुविधा थपबाक प्रावधान रहल अछि। एहिना 8 प्रकारक करा रोग में 1,00,000 बराबर के थप सेवा प्रदान कयल जेबाक स्वास्थ्य बीमा बोर्ड जनौलक अछि। नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 22 पुरैनी स्थित कांति ताल संरक्षण के अभाव में जीर्ण बनित गेल अछि। नेपालगंजक प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रक रूप में रहल ताल एखन झाड़ी बुटान सँ बढ़ि कऽ एकरूप बनित गेल अछि। स्थानीय चक्रबूढ़ा कहलनि जे सौंदर्यताक लेल नेपालगंज उप महानगर करोड़ों टका खर्च कऽ निर्माण कयल रेलिंग ढहि गेल अछि। सुरक्षाक लेल सरकार भेल निकाय के बेर बेर खबर कयलाक बावजूदो एखन धरि कोनो सुनवाई नहि भेल अछि। कांति ताल में विभिन्न पक्षी सभक वास स्थान रहलाक कारणे संरक्षण कर्मी तथा पर्यावरण संरक्षण में अरुचि रखला सँ आवाज उठा रहलाक कारणे तत्काल ताल के संरक्षण में सरकार भेल निकाय सब अरुचि नहि देला सँ ई समस्या उत्पन्न भेल। स्थानीय वासी सब ई उल्लेख कयलनि अछि। नेपालगंज उप महानगर ताल संरक्षण का पर्यटकीय स्थल बनेबाक लेल 10 करोड़ खर्च कऽ कांति ताल संरक्षण के अभाव में कुरूप आ जीर्ण बनित गेल स्थानीय हुनक सभक आरोप रहल छल। ताल क्षेत्र एखन मादक पदार्थ दुर्व्यसनिक जमघट बनल कहैत रातिक समय में शंकास्पद गतिविधि होइत गेल स्थानीय वासीक शिकायत रहल अछि। नेपाल टेलीकॉम बीतल आर्थिक वर्ष 2082-83 के 4 त्रैमासिक धरि में 8,86,46,00,000 खुद मुनाफा कमाओल जनाओल गेल अछि। कंपनी आइ सार्वजनिक कयल अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार अगला आर्थिक वर्षक ओही अवधि के तुलना में खुद मुनाफा 47.58% बढ़ल अछि। आर्थिक वर्ष 2081-82 के 4 त्रैमासिक धरि में कंपनी खुद मुनाफा 6,67,00,000 छल। एक वर्ष के अवधि में कंपनी खुद मुनाफा में 2,85,79,00,000 सँ वृद्धि भेल अछि। कंपनी के अनुसार समीक्षा अवधि में कर सँ पहिने मुनाफा सेहो लेख बढ़ल अछि। गत आर्थिक वर्ष के 4 धरि में कर आ पहिने मुनाफा 13,26,47,00,000 पहुँचला पर अगला बेर आर्थिक वर्षक ओहि अवधि में ई मुनाफा 9,85,00,000 आ 2,00,000 छल। एहि आधार पर कर

गंज भवानीपुर में घरेलू मदिरा उत्पादन भरल सूचना पड़ाक बाद प्रहरी संयुक्त रूप में कार्यवाही कैलक। जिला प्रहरी कार्यालय से प्रहरी नायब निरीक्षक नवल किशोर साहा के नेतृत्व में 13 गोटे मिलाकर 16 गोटे के जमा ट्रोली परिचालन कैल गेल छल। जैमे ई प्रहरी ट्रोली मदिरा बनाओल गेल प्रयोग कैल लगभग 10,000 लीटर कच्चा पदार्थ नष्ट कैल जनौलक अछि। कार्यवाही क्रम में नियंत्रण में लेल गेल अछि आ एहि में प्राप्त भेल 11 ड्रम एकटा टीनक ड्रम लगाए सामग्री जिला प्रहरी कार्यालय 12 में आनिकर राखल गेल प्रहरी जनौलक अछि। महतरीक सोनमा गांव पालिका घरे में सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कैलक अछि। काल्हि सँ पूर्ण रूप में अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक सबके घरे में पहुँचकर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान कैला पर सोनमा पंचीकरण शाखा प्रमुख दीपक कुमार यादव ई बात बतौलनि अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जेनजी आंदोलन के शहीद परिवारों और घायलों को 50 लाख रुपए तक का सहूलियतपूर्ण ऋण देने का सरकार का निर्णय। पोखरा की विजयपुर नदी में बहकर दो बच्चे लापता। नुआकोट के टोखा छहरे सड़क खंड में बस दुर्घटना में दो लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड द्वारा ऑनलाइन ही स्वास्थ्य बीमा में शामिल होने की व्यवस्था शुरू। और इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के पास शक्तिशाली भूकंप, कम से कम 38 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने जेनजी आंदोलन के शहीद परिवारों तथा घायलों को स्वरोजगार उद्यम संचालित करने के लिए 50 लाख रुपए तक का सहूलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। अर्थ मंत्रालय ने कल सहूलियतपूर्ण ऋण देने के लिए ब्याज अनुदान संबंधी दूसरी संशोधन कार्यविधि 2083 जारी करते हुए ये व्यवस्था की। संशोधित कार्यविधि में जेनजी आंदोलन के शहीद परिवारों तथा घायलों को लक्षित करते हुए स्व रोजगार उद्यम ऋण प्रणाली जोड़ी गई है। इसके साथ ही सरकार ने जेनजी आंदोलन से प्रभावित परिवारों तथा घायलों को स्वरोजगार और उद्यमशीलता के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सहूलियतपूर्ण ऋण का दायरा बढ़ाया है। पोखरा में आज दोपहर विजयपुर नदी में बहकर दो बच्चे लापता हो गए हैं। जिला पुलिस कार्यालय के डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान के अनुसार पोखरा 14 स्थित विजय बस्ती से विजयपुर नदी पार कर पोखरा 26 के सकनेरी की ओर जाने के क्रम में भगवती हाइड्रो पावर के पास करीब 14-15 वर्ष के दो बच्चे नदी के तेज बहाव में बह गए। दोनों की पहचान और पता अभी खुलासा नहीं हुआ है। डीएसपी पासवान के अनुसार 10 बच्चों का समूह नदी पार कर रहा था। इनमें से 8 बच्चे सुरक्षित पार करने में सफल रहे, जबकि 2 लापता हो गए। उनकी तलाश जारी है। इसी तरह सशस्त्र पुलिस बेस कैंप कुडहर से रस्सी और अन्य खोजी उपकरणों सहित 9 सदस्यीय टीम को भी खोजी अभियान में लगाया गया है। नुआकोट के टोखा छहरे सड़क खंड में आज हुई बस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार नुआकोट स्थित दुपचेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा रहे तीर्थयात्रियों से भरी बस शिवपुरी गांव पालिका 7 के थाना भज्यांग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कावरे के बनेपा नगर पालिका 8 की 54 वर्षीय कृष्ण माया प्रजापति डंगोल और रामेछाप के खाड़ा देवी गांव पालिका 2 की 65 वर्षीय उदय माया खत्री की मौत हुई है। नुआकोट के पुलिस प्रमुख एसपी बिपिन रेग्मी ने बताया कि काठमांडू से तीर्थयात्रियों को लेकर दुपचेश्वर धाम जा रही बस थाना भज्यांग में सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान बस अचानक अपने आप चल पड़ी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में घायल 3 लोगों का काठमांडू में उपचार जारी है। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ने ऑनलाइन बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू की है। बीमा कार्यक्रम में नई आबद्धता, बीमा लेख नवीकरण, सेवाग्राही का KYC अपडेट कराने लगात सभी काम ऑनलाइन ही किया जा सकता है। ये जानकारी बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर पवन कुमार शाह ने दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले बीमा सहयोगी के माध्यम से पंजीकरण जैसे काम होते थे, लेकिन कल से शुरू की गई सेवा के कारण अब ऑनलाइन ही सभी विवरण और सेवा प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए ई सेवा खलती और कनेक्ट IPS के जरिए शुल्क भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 3,500 रुपए के योगदान से 5 व्यक्ति तक के परिवार को 1,00,000 रुपए तक की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह ने नेपाल और भारत के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों तथा दोनों देशों के बीच सहयोग के आगामी दिनों में और मजबूत होने का विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने समकक्षी नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और भारतीय जनता को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री शाह ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि नेपाल और भारत के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध, दोनों देशों की जनता के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग आने वाले वर्षों में और मजबूत हो। इसी तरह भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने अपने समकक्ष भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को शुभकामना संदेश भेजते हुए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त की है। संदेश में परराष्ट्र मंत्री खनाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले दिनों में नेपाल भारत के बीच आत्मीय संबंध, मित्रता और सहयोग और अधिक मजबूत होते जाएंगे। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पौडेल ने कहा है कि परसा राष्ट्रीय निकुंज को मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए नीतिगत सुधार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं, पूर्वाधार की स्थिति तथा मौजूदा समस्याओं और चुनौतियों को लेकर आज परसा में हितधारकों के साथ आयोजित चर्चा में मंत्री पौडेल ने कहा कि निकुंज के पर्यटन विकास के लिए आवश्यक नीतिगत सुधार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्वाधार के विकास, निवेश का अनुकूल वातावरण बनाने तथा प्रचार प्रसार को प्राथमिकता देते हुए परसा राष्ट्रीय निकुंज को प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की पहल की जाएगी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G।

0: नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। रोल्पा के थवांग गांवपालिका 5 स्थित कोटल 12 में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। पुलिस के अनुसार लापता लोगों में से प्यूठान के सरुमारानी गांवपालिका 2, ददेरी स्थित राप्ती नदी के बीच से रोल्पा के थवांग गांवपालिका 5 कोटल 12 निवासी करीब 80 वर्षीय जंबरपून मगर का शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या 12 पहुंच गई है। जिला पुलिस कार्यालय रोल्पा के इंस्पेक्टर कृष्ण श्रेष्ठ ने बताया कि भूस्खलन में अभी भी एक बच्चा लापता है, जबकि 2 घायलों का बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि घटना में लापता बच्चे की तलाश जारी है। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने कहा है कि युवाओं को बदलाव को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आज काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा पीढ़ी की ऊर्जा से समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। उन्होंने युवाओं से सूचना प्रविधि का अधिकतम उपयोग करते हुए समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से में फ्लोरेस द्वीप के पास आज सुबह 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप में कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। भूकंप का केंद्र पूर्वी नूसा तिंगारा प्रांत में एंडे शहर से करीब 68 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और 10 किलोमीटर की गहराई में बताया गया है। भूकंप से कई मकान और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं तथा भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, जिसे करीब 3 घंटे बाद वापस ले लिया गया था। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जेंजी आंदोलन के शहीद परिवारों और घायलों को 50 लाख रुपए तक का सहूलियतपूर्ण ऋण देने का सरकार का निर्णय। पोखरा की विजयपुर नदी में बहकर 2 बच्चे लापता। नुआकोट के टोखा छहरे सड़कखंड में बस दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड द्वारा ऑनलाइन ही स्वास्थ्य बीमा में शामिल होने की व्यवस्था शुरू। और इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के पास शक्तिशाली भूकंप, कम से कम 38 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
2: फोर्जी LTE मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
3: अनन्त सम्भावनाको पुञ्ज, गतिशील मानव जीवन, कर्मशील सारा संसारका नेपाल र नेपाली मन।
4: दूर सुदूर क्षितिजका नेपाली अनुभव शब्द चित्रमा कोर्दै स्वदेशको सम्झना र परदेशको अनुभव सुन्ने सुनाउने एउटा चौतारी कार्यक्रम घर देश परदेश। कार्यक्रम घर देश परदेशमा स्वागत छ। म प्रस्तुता हेमन्त उप्रेती। विश्वव्यापीकरणसँगै यातायात र सूचना प्रविधिको विकासले अझ साँगुरो हुँदै गरेको आजको संसारमा रोजगार, स्वरोजगार, वृत्ति विकास, शैक्षिक प्राज्ञिक उन्नयन, तिनको प्रयोग उपयोग र सुविधामय जीवनको आकांक्षामा मानिस संसारभर फैलिँदो छ। नेपालीहरू मात्र यसमा अपवाद छैनन्। कर्मक्षेत्रमा जहाँ जहाँ रहे पनि स्वदेश र जन्मभूमिप्रति सदा कृतज्ञ रहने नेपाली मनहरूका स्वदेश विदेशका जीवन अनुभवहरू खोतल्ने एउटा प्रयास हो कार्यक्रम घर देश परदेश। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट हरेक शनिबार राति 10 बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम प्रसारित हुन्छ। साथै रेडियो नेपाल online.com र रेडियो नेपाल मोबाइल एपमा पनि यो कार्यक्रम संसारभर सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ डाक्टर मानबहादुर रोकाया। करिब 18 वर्ष अघिदेखि

वरधर सुधया पूरयन्गोप वृन्दारण्यं सुपद रमनं प्राविशद गीत कीर्ति ही। यो श्लोक भागवत को लगेर सुखदेव परमहंस जो बम पड़काए पनि सुन्दैन थिए, मस्त समाधिमा रहन्थे, उनको अगाडि यो एक श्लोक सुनाइदिए त उनको समाधि ताप ठोक्यो, नर्मल व्यक्ति बने। फेरि अर्को एक श्लोक सुनाए शिष्य द्वारा,